प्रभु दे प्यार विच लीन होया होया मनुख प्रभु दी सर्वशक्ति मानता नू अपने हिरदे विच वसा लैंदा है, पर ऐसा केवल ख्यालां विच ही नहीं करदा, बल्कि वह जगत विच इस गल नू वापरदी होई वेखदा है कि प्रभु हर थान ते अपने सेवक की रक्षा करदा है। श्री गुरु कलगीधर जी महाराज इस पावन शब्द विच फरमान करदे ने, रोगण ते अरसोगण ते जल जोगण ते बहु भांत बचावै, शत्र अनेक चलावत भाव तऊ तन एक न लागण पावे। भाव प्रभु अपने सेवक दी रोगां तों सोगां तों शत्रुआं तों पापां तों रख्या करदा है, इत्थों तक कि जन्म तों भी पहलां दी हालत विच सदा अपने सेवक लई रख्यावान हुंदा है। प्रभु इतना कु सर्वशक्तिमान है कि अपने सेवक दी हर प्रकार और हर थां ते रख्या करदा है। गुरु कृपा करे यह ख्याल साढ़े हिरदे विच भी वसे ते असी इस ख्याल नू माण सकीए कि प्रभु रोगण ते आसोगण ते जल जोगण ते बहुपात बचावै।

0: रंगा
1: हाथी भी बने ते पांच जानवर मछिया वांगू बने कई जन्म बने ये नहीं पता पई किसे दी मच्छी नू कुंडी पै गई है तो आ गई है निकल के पानी तो बाहर जो उथे मर गई है क्योंकि उदा आधार पानी है उदा जीवन पानी है उदी प्रीति पानी नाल है पानी तो कटो ते मर गई पर जून तक भोगी ना उसने जन्म ते लिया ना कई जन्म गज मीन को रंगा
0: कई जन्म पंखी सर्प होयो

बहुत दाम दीवान मकान नादान। इस नादान बंदे ने सिर तोड़ सिर ते पैर रख के इना सब कुछ बनाया नादान। फिर मेरा हुक्म हासिल होवे, मेरे को चार कोटा भी वधिया होन, ते फिर इन्हां दा गुमान करी बैठा है। वाह वाह। एक ने आके कहा धर्मराजा नूं, मेरा राज सी, वो कहन लगा गलत बात है, ये तो तेरा प्यो जदों सी वो भी कहिंदा सी मेरा राज है। तेरे प्यो नूं पुछिया पे किहदा राज है, वो कहिंदा मेरा। जदों वो चल गया तो वह तो पिछली पीढ़ी देख लो, तेरे दादा भी यही गल कहिंदा सी, तेरा पड़दादा भी यही गल कहिंदा सी, तेरा नकड़दादा भी यही कहिंदा सी। पांच छे पीढ़ियां तो तेनूं गुणा दे, नकड़दादा पड़दादा दादा प्यो तू ये सारे कहिंदे सी मेरा, पर तू हुण जा रहा हुण किहदा है, हुण किहदा तेरा नहीं। नादान ने सारियां बातां कहियां, दौलत दाम दीवान मकान नादान, गुमान ना करो, इहदा गुमान ना करो। असीं इहदा ही करी जांदे। राजा साहब का बचन देखो, बरसी मनाने का तां फायदा है जे असीं उन्हां दा बचन सुनीए और उन्हां दा बचन मनीए। अगली बात है जी, कहिंदे जिहड़े तेरे नाल शरीक जुड़े हो ना, तेरे घर वाले, तेरे पुत्र, तियां, रिश्तेदार, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने पूर्व जन्म के मिले सहयोगी। पिछले कर्मां दे जिवें खूह दीआं टिंडां जुड़ियां पईआं ना, खाली तुरी जांदीआं, भर के आ जांदीआं, खाली तुरी जांदीआं, पानी डुली जांदा, ते तेरे पूर्व जन्म के मिले सहयोगी, अंते को ना सहाई। सहाई बचने मारे। धन्यवाद, मैनू डाउट सी थोड़ा जिहा, बहुत मेहरबान। ए तियां पुत्र रिश्तेदार तेरी घर वाली और तू पूर्व जन्म के मिले हुए हो, ते अखीर वेले वे किसे ने नहीं जाना, जे जाना तां किहे जाना,

अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साडे प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के, इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। आज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम कीता है भाई। गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेनू शरीर मिलिया सी, उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव किया है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ये इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूंडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

this is what we have done. ऐसे ही किया है. स्वार्थ, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात का हाथ किसी ही पे सगले लर लर मुआ, बाद बाद विवाद, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साढ़े जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद काट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा काट किसे दे थोड़ा जा वद, सारे केंदे लड़ लड़ के मर रहे हन. इस चीज ए रतन जन्म जड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इन्हां चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता. तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ए प्राप्त होया सी. प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है. तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है. बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने हैं. ए तेतों हिसाब, तेतों ए सवाल, ए तेतों लेखा पुछया जाना है. कहंदे हन

सो प्रकरण आरंभ किया सी अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मुतलक ही पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मुतलक पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मुतलक इनफॉरमेशन जो सानू दित्ती गई है ओ सरवण करिए उसनू हासिल करिए ओ सुनिए कि ए वस्तु की है शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी चों 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हन ओ मिलदे हन जिथे सानू ए दस्या जांदा है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हां। नंबर एक, शरीर दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ जड़ी ना असी बना सकते हां ना असी खरीद सकते हां, यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदी है, इसते किसी का जोर नहीं है। यह दुर्लभ चीज है, दुर्लभ चीज वो हुंदी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके, दुर्लभ वस्तु है साढ़े सबना दे पास। और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नू बड़े सैड, बड़े डिप्रेस्ड, बड़े मायूस, जिदा साढ़े पास कुछ भी नहीं है, इस तरह फील करते रहने। हालांकि साढ़े पास एक दुर्लभ वस्तु है जिड़ा कि 84 लाख जून नू भी चांस उस नहीं, नहीं मिलता जिसका वो साढ़े पास है, उसकी असी वैल्यू नहीं करते, सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है, तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शह होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि ए रब दी कामणी है, रब दी औरत है, रब दी पत्नी है। काया कामण अत सवालियो फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। ए सच्चे पिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है, पर इस सुहागण नू जे पिर तो वाहिगुरु तो दूर ले जाओगे, दुनिया दे विच जाके इस नू गवा दोगे, स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नू डोब दोगे, ये कुमला जाएगी। क्योंकि पिर तो दूर ले जाओ पत्नी नू तो वह कुमला जाती, उदास हो जाती, वह मर जाएगी। इस शरीर नू वाहिगुरु की संगत च रखो, साधु संगत च रखो, गुरबाणी की संगत दे विच रखो, तो यह शरीर जो है वह हरिया भरिया होएगा, यह मौलेगा, यह खिलेगा। इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर ले जाओ, वो इसकी जिंद जान है, ये मायूस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। ये रब दी कामणी है, इसनू रब दे नेड़े रखो, इसनू उस तो विछोड़ो ना। तीसरा नुक्ता रखिया सी, ये मंदिर है, ताया महल मंदिर घर हर का, जिसमें राखी जोत अपार। जिस तरह किसी मंदिर दे नाल ट्रीट करते हो उसे तरह इस दे नाल ट्रीट करो। मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती, इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती। जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लियांदियां जा सकदियां वह वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईयां जा सकदियां। इस मंदिर का सत्र तिरस्कार नहीं किया जा सकता, निरादरी नहीं की जा सकती, इस मंदिर नू भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, इस दे लई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुक्ता सी, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है, सारे यूनिवर्स दे विच है, जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे, सारा जगत सारी रचना वाहिगुरु दी अकल इंटेलिजेंस एंड कला आर्ट, इंटेलिजेंस एंड आर्ट दे नाल सारी जितनी भी रचना है भरी पई है। कहिंदे ओ सारी दी सारी इंटेलिजेंस एंड आर्ट तुहाडे इस शरीर दे विच है, जो खोजे सो पावे, जो उसनू खोजेगा सो पा लेगा। अगला नुक्ता सी कि एक घोड़ी है, शरीर कोड़ी है और तुसी इस दे सवार हो, पर हुण चक्कर उल्टा हो चुका है, जो कोड़ी है वो सवार दे उत्ते सवार हो ही पई है, वो सवार दा आखा नहीं मनती है। कहिंदे इस दे उत्ते सवार हो वो भाव, इस दे उत्ते मास्टरी अचीव करो, इस दे स्लेव ना बनो। जदों सानू एडिक्शंस हो जांदियां हन उदों असी बॉडी दे स्लेव हो जाने हां, कहिंदे इस दे स्लेव ना होवो। अगला नुक्ता जो कल छेवां आख्या सी कि यह श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है, बाकी सारिया जूनिया तो कहिंदे पानी परवाया जा सकता है, यह सब तो ज्यादा उत्तम है।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਨੁਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

शरीर सरोवर भीतर है, शरीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असीं विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जिहड़ी वस्तु पानी है वह है कित्थे, वो कित्थे है? कहिंदे हन अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहिंदे तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर दी सिमली दे के कह रहे हन कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप दा मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल्ड। कहिंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है, तो सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहिंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हैं कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहिंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्मो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरख ओतमो जां कै रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहिंदे जां कै रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। तो हुण सारे इस पंक्ति नूं दास तों बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असी अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है, असी ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने होए पानी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हां। कहिंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम जोत पुरख ओतमो जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम जोत है, ओ पुरख ओतम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है, अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है, तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ करांगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है वो इस दे विच है, अते ये एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शन्स दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है, ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक को पहुंचा ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे ओ होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उसके ढंग की हैं, उस दीयां विधियां की हैं, उस कमल नू खिलाण दे वास्ते कि वह खिले उस दीयां की रिक्वायरमेंट्स हैं। यह कीर्तन आने वाले दिनों दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दियो टाइम सिर ताकि इस लड़ी नू असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नू जान सकीए, ते शरीर दे अंदर जो है उसनू जान जाइए, ते उसका रस्ता समझ लईए पे उस तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफला हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नू समझ लईए और शरीर नू समझन तो बाद इसनू सानू साधना पैना है, इसनू सानू फिर कढ़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नू साधना पैना है, इस उते बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है। वो सारा कुछ अगले कीर्तनां दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नू समझ लवांगे, इस नू साधना किवें है वह समझ लवांगे, इस शरीर के अंदर की है वह समझ लवांगे, उस तक पहुंचने का रस्ता की है वह सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असीं उस अंदरले जगत की खूबसूरती नू एक्सप्लोर कर लवांगे। अते जो अंदर साडे वस्तु नू पाउण नू महाराज ने किया है उसनू असीं पा लवांगे, जीवन की यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नू गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग

गोविंद सिंह मैं हूं परम पुरुष को दासा देखने आयो जगत तमाशा देखने आयो जगत तमाशा जो मुखो जो मुखो परमेश्वर पुजे ते सब नरक कुंड में पर है मोको दास तब उनका जानो वाह वाह गोविंद सिंह

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तपतापे।

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे ठिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

0: महल पलक लिखे तुम्हे सर कितने सो भला पहला
1: हरि गुरु अपने पहाड़ी सदवार जिन मानस ने देव देखिए।

जमीन कटे बेकार पैर धरती जमे पार पैर चंद्र है सिर पार पैर चला जा तरवार पैर सूर्य पैर चंद तो करोड़ी चंद नंद पैर सिंधु सुनार पैर चा डाने आकाश पैर जोत मामल सूर पैर जावे जावे मोर सजे पौन के सिद्धे नानक ने पौ निरंकार सचे अल्लाह पैदा नानक ने पौ निरंकार होते तेरा अनुवाद कितने कन कहानियां कितने भेद विचार।